0: जन को तीर्थ पग
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जन पद का पर है न पग
1: हर का नाम जन की वड़े आई
0: हर के नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को पूजोग
0: हर नाम जन पद कठिनाई वियोग
1: जन राता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन के मालिक जीना
0: हर जन को आप दीना
1: हर हर जन के ओट सतानी
0: हर पर जन अवन जानी
1: ओत पोत जन हर रस राते
0: समाध नाम रस माते
1: आठ पहर जन हर हर जपे
0: हर का भगत प्रकट नहीं छपे
1: हर की भगत मुक्त बो करे
0: नानक जन संगे ते तरे
1: पार जाते हर को नाम
0: काम दे हर हर गुण
1: गाम सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम स्वंत राठ
1: नाम की महिमा संत रिद्ध वसे
0: संत पर साथ सब नसे
1: संत का संगवड़ भागी पाई है।

0: ऊपर सुख बसे
1: सुख पर आत्मी बनता संघ से
0: प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक अमूला
0: प्रसाद भोगे सब रसा
1: जगत सामग्री संसाथ बसा
0: ने हस पाप का नेता रसना
1: जिसे त्याग संग रचना
0: दुख मुण अंध व्यापे
1: नानक।

0: बसे
1: आनंद के माया रंग रसे
0: जगत मने मने प्रतीत
1: काल न आवे मूढ़े चीत
0: क्रोध काम क्रोध मोह
1: चोट विकार महालोक त्रोह
0: याहू जूत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख ले आपन कर्म
0: सूठा कर तुम पै अरदास
1: यो बिन दाव तेरी राम
0: मात पिता हम बारक तेरे
1: तुमरे कृपा में सुख कनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे।

0: पर विकार को ताव है
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
1: मिथ्या भास लेत बेकारा
0: बिन बूझे मिथ्या सब पे
1: सफल दे नानक हर हर नाम लये
0: प्रीति सागत की आर जा
1: साच बिना कह हो वत सूचा
0: मिथ्या नाम बिना तन अंध
1: मुखिया वता कह दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रहन बिथा बिहाय
1: वेग बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम
1: जो केर पणके निरार्थ धाम
0: तन तन तेजन जैकट बस्यो हर नाम
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रह तवर कछवर कमावत
1: मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत
0: चानन हार प्रभु पर बीन
1: बाहर बेख न काऊ पीन
0: अवर उपदेशे आप न कर
1: आवत जावत जन मैं मर
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
1: नानक उन जन चरण पर आता
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आप है मान
0: आपे आप करत निभेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: पाप स्यानप सगलते रह
1: सब का जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस लय लड़ लाए
1: कानत अंतर है।

0: खाए।
1: जिसरा कर को रख मन माहे,
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे,
1: जिसको सिमरत परम गत पाव है।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर,
1: जिसे त्याय सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद गृह संग सुख बसना,
1: हर पैर सिमर हो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटम भंडावे,
1: जिसे त्या कद अबर लुभाव है।
0: जय प्रसाद सुख सेत सोई जय,
1: आठ पैर ताका जस गावी जय।
0: जय प्रसाद तुझ सबको मान है,
1: मुक्ता को जस रसन खान।
0: जय प्रसाद तेरु रहता धर्म,
1: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जपत दरगे मन पावे,
1: नानक भसे ती कर जावे।
0: जय प्रसाद आरोग कंचन देई,
1: लिवला वो तिस राम स्नेही।
0: जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल क्षेत्र ठाके,
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके।
0: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन सास सास सिमरो प्रभु ऊंचे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद अपूखन पहरी जय,
1: मन ति सिमरत क्यों आलस की जय।
0: जय प्रसाद अस हस अस्वारी,
1: मन ति प्रभु को कबू ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाक मिलक तना,
1: राख परोए प्रभु अपने मना।
0: जिन तेरी मन बनत बनाई,
1: उठत बैठ सत से त्याई।
0: किसे त्याए जो एक लख है,
1: इहा उहा नानक तेरी रख है।
0: जय प्रसाद करे पुन बोधान,
1: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी,
1: इस प्रभु को सास सास चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात,
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है,
1: गुर प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुने कर नाद,
1: जय प्रसाद देख विस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सह जे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चले,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सह समावे।
0: ऐसा प्रत्याग वरकत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।

0: तू पावे साच
1: रे मन मेरे तू ता सो राच
0: जय प्रसाद सब कीगत होए
1: नानक जाप जपै जप सोए
0: आप जपाए जपे सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
0: सरम निदान प्रभ तेरी मया
1: आपो कछु न

0: मुख उजल होत
1: मल सक नीक होत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग पर सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संगे कूप पर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन पराणी
1: नानक साध की सो बाप्रम महेश मानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुल्ले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस कुंचा
0: साध संग होए सबकी रैन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग ना कथु टावे
1: साध संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभु सो परसन
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनी।

0: थाप
1: साध के संगत जे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कभू तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बसत अगोचर लहे।

0: के सम पाप पलायन
1: साध
0: के संग सरब थान गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कश काल
1: कशन बेटा तो होत निहाल
0: साध के संग

0: संगत पे ही हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पे टे संजोग
1: साध की महिमा वेद ना जाने
0: जेता सुने चेता बखियाने
1: साध की उपमा ते गुनते दूर
0: साध की उपमा रही परपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूंचते

0: के दृश्य समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक
1: वसुदा को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
1: नानक जो पाव का सह सुपाओ
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैं न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास
1: जैसे तारियु पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मैंने अपने

0: दीना।
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया।
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस।
1: ब्रह्म

0: के होई सो पला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अंग बोध ते आगत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक

0: ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर,
0: ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही,
2: ब्रह्मज्ञानी
0: का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश,
0: ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय सुदा अदाखर,
1: ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय अदे आखर, ब्रह्मज्ञानी

0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अंत अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: नानक को अपर सगल निस्तारे
1: मिथ्या नाही रसना पारस
0: मन में प्रीत निरंजन दर्स
1: आज त्रिया रूप न पेख नेत्र
0: साथ की गैल संसम केत
1: कर्ण सुने काहू की निंदा
0: सबके जाने आपस को मंदा
1: गुरु प्रसाद दिख्या पर हर
0: मन की वासना मनते करे
1: इंद्र जित पंच दोख ते रहत
0: नानक कोड मत देखो ऐसा प्रस
1: रसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विषम की माया ते हो भिन्न
1: कर्म कत हो वैने कर्म
0: जिस मौका निर्मल कर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल भगत के तन संग राचे
1: तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सबो पर हो वत कृपाल
1: आप जगह अबरा नाम जपावे
0: नानक यो वैष्णव परम गत पावे
1: भगवती भगवंत

0: जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
1: जैसा अमृत तैसी बिखाटी,
0: जैसा मान तैसा अभिमान,
1: जैसा रंग तैसा राजान,
0: जो बताए साई जुगत,
1: नानक को पुरस कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जैसा राखे तैसा ते नाओ,
0: अपने कन करावन जोग,
1: रपा वैसो ही पन होग,
0: वस्र आप हुई अंत तरंग,
1: लखन जैसा ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दे तैसा प्रगाश,
1: पार ब्रह्म करता अविनाश,
0: सदा सदा सदा दयाल,
1: सिमर सिमर नाम।

0: करन कर रावण करने जोग
1: जो तिस पावे सोई होग
0: खिन में था पुथा पन हारा
1: अंत नहीं किस पार आवारा
0: हुक्मे तार अधर रहा वे
1: हुक्मे अबजे हुक्म समावे
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
1: हुक्मे रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी वडियाई
1: नानक सब में रे समाई
0: प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे बिन सास्त राखे प्रभ पावे ता पतित उधारे
1: आप करे अपन बिचारे
0: दुहा श्रिया का आप स्वामी
1: खेले विषय अंतर जामी
0: जो पावे सो कार करावे
1: नानक देशी अवर में आवे
0: कहूं मानुक ते क्या हुए आवे
1: जो जिस पावे सोई करावे
0: इसके हाथ हुए ता सब किछ ले
1: जो जिस पावे सोई करे
0: अनजानत बिख्या मह रचे
1: अपने आप बचे
0: पर में पूला देह दिस तावे कर कृपा जिस अपनी पगत दे
1: नानक ते जन नाम मिले
0: खिन में नीच कीट को राज
1: पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दृष्ट कछु ना आवे जाको अपनी करे बख्शीस जियो पिंड सब तिसकी रास अपनी बनत आप बनाई
1: नानक जीवे देख वडाई
0: इसका बल ना ही इस हाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो कभू ऊंच नीच में बसे कभू निंद चिंद व्यवहार कभू बेता ब्रह्म विचार कभू नृत्य करे बहुपात कभू महाक्रोध बिकराल कभू होए बह बड़ राजा कभू अब की रत में आवे जो प्रभ राखे तिव ही रहे कभू होए पंडित करे बखान कभू तट तीरथ स्नान कभू कीट हस्त पतंग हुए जिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कभू सात संगत एह पावे अंतर हुए ज्ञान परगास
1: उस स्थान का नहीं विनाश
0: मंथन नाम रते इक रंग
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
0: जो जल में जल आए खटाना
1: जो जो तीसंग जो

0: जिसके अंतर राज विमान जो जाने में जो बनवंत आपस को कर मंत कहावे तन पूम का जो करे गुमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे तन मंता हुई कर गर बावे बहु लस्कर मानक ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनेक तपस्या करे अहंकार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे आपस को जो पला कहावे सर्व किरेन जा का मन होए जब लग जाने मुझते कछ होए जब ऐ जाने मैं किच करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस कटेलक को उठतावे अनेक भोग विख्या के करे बिना संतोख नहीं को राजे नाम रंग सर्व सुख होए करन करावन आपे आप करन करावन करने हार
1: इसके हाथ का विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आपे आप प्रभु सोए
0: जो किचकिनो सो अपने रंग
1: सब ते दूर सबू के संग
0: बूझे देखे करे विवेक
1: आपे आपे अनेक
0: मरे न बिन से आवे न जाए आप उपदेश समझे आप
1: रचिया सब के साथ
0: आप किनो आपन विस्तार उससे पिन कहो कि छोए अपने चलता करने हार
1: करे रंग पार।
0: मन में आप मन अपने माहे
1: कीमत कहने जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी सच सच सच सब कीना पला पला पला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

0: कटें,
1: संत के दुखन दर्द नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन शोभा देहीन,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन भान प्राप्त होए,
0: संत कृपा कृपा जे करे,
1: नानक संत निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संत के दुखन काग ज्यों लवे,
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए,
1: संत के दुखन सर्व जोन करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सबको चले,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच न जाए,
0: संतो की कथा को नाहे,
1: नानक संत पावे तो एक ही गत पाए,
0: संत का निंदक मत ताई,
1: संत का निंदक न पाए।

0: रोग
1: संत की निंदा दोख में दोग
2: नानक संत पावे का उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
2: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डाल लागे
2: संत के दुखी को सब त्यागे
1: संत का दुखी मां अहंकारी
2: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म में मरे
2: संत की दुखना सुख ते डरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
2: नानक संत पावे ता ले मिलाए
1: संत का दुखी अत बीच ते टूटे
2: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए
2: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर तेत होता
2: सांस बिना मृत की लोता
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाही
2: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न राखन हार
2: नानक संत पावे ता ले उबार
1: संत का दुखी यो बिलाए
2: जो जल पीउन मछली तड़पाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
2: जो पाव अकीन दन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
2: जो बुआर ते खेत माए लोहेला
1: संत का दुखी तरन ते रहत
2: संत का दुखी सब मिथ्या कहत
1: किरत निंदक का तो ही पया
2: नानक ज्योति पावे सोई पया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
2: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
2: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा
2: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टे कोए
2: जैसा पावे तैसा कोई होए
1: पया किरत ना मिटे कोए
2: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसके ओ करने हार
2: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: प्रभ की उसत करो दिन रात
2: किसे ते आवो सास के रात
1: सब कछ बरते तिसका किया
2: जैसा करे तैसा को किया।

0: रहे अगाए
1: बोल कृष्ण लागे आए
0: मारे राखे को आप
1: मानो के कितना ही हाथ
0: जिसका हुक्म बुझ सुख होए
1: जिसका नाम रखन परोए।

0: नैनो पे ठाकुर का रंग
1: सत्संग बिनते सब संग
0: चरण चलो मार को बिन
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा।

0: सोदत सोदत सोदत सीजा जब देखियो तब सब किछ मूल
1: नानक सो सुखम सोइए सोन
0: न किचन में न किछ मरे
1: अपन चलता भी करे
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
1: आज्ञाकारी सारी सब
0: श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अब ना सी ना ही किछ खंड अलग अभेद पुरख प्रताप जिन प्रभ जाता सो सो भवंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण।

सैर सुबाय होवे सो होए, प्रभ का किया जन्नी लगाना, जिससे उपचित माही समाये।

0: सब जाके
1: राज
0: में राज योग में जोगी
1: चाहे
0: चाहे भगते सुख पाया
1: पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे पिता का जन्म के जाने पूरा।

0: जिसकी शवर नहीं दृष्ट आया
1: नाम तन नामो रूप रंग
0: नामो सुकर नाम का संग
1: नाम रस जो जंत्र
0: मन तन नाम है नाम समाने
1: उठत बैठत सोवत नाम
0: कहो नानक जन के सद काम
1: बोलो जाजे वा दिन रात
0: प्रभु अपने जन की नी दात
1: करे भगत आत्म कह चाहे
0: प्रभु अपने सोर है समाए
1: जो हो आहो वसो जाने
0: प्रभु अपने का हुकम पछाने
1: जिसकी महिमा कौन बखानो
0: जिसका गुण कहे एक न जानो
1: आठ पहर प्रभु वसे हजूरे
0: कहो नानक से ही जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: जिसकी सन सर्व सुख पावे
0: जिसके दर्शा पाप मिटावे
1: अवर स्यान पर सगली

0: गुर बचनी हर नाम उच्चर
1: सतगो सेके बंधन काटे
0: गुर का सिख विकार दे हटे
1: सतगो सेको नाम तन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगो सेका हालत पालत सवार
0: नानक सतगुर सिखो जी नाल समार
1: गुर के ग्रह सेवक जो रह
0: गुर की आ गया मन में सह।

0: कर जाए बसे अबना सी
1: कोना ने काटी जम फांसी
0: संत विचार कहे जन साचा
1: जन्म मरे सोका चो काचा
0: आवागमन मिटे प्रभ से
1: आपते आग शरण गुरुदेव
0: यो रतन जन्म का होए उधार
1: हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनेक उपाप न छूटन हारे
1: सिमरत शास्त्र वेद विचारे
0: मन की भगत करो मन लाए
1: मन वंचित नानक फल पाए।

0: बिगाना
1: नाम भी सारना नक पछत आना
0: की मत तू ले आने
1: भगत बिना बहुत डूबे से आने
0: हर की भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल रखो मन माहे
1: जन्म जन्म के किल बिक जाहे
0: आप जपो अपना नाम जपावो
1: सुन तो कहत रहत गत पावो
0: सार पूत सत हर को नाओ
1: सह सुपाई नान गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल
1: बिन सजाए हो मैं बिक फैल
0: होए अचिंत बसे सुख नाल
1: सास ग्रह सर नाम संभाल
0: सार सियानक सगली मना
1: साध संग पावे सच तना
0: हर पूंजी संच करो व्यवहार
1: इहा सुख दरगह जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख
1: ओ नानक जाके मस्तक लेख
0: एको जप एको साला है
1: एक से मर एको मन आहे
0: एक के गुण गाओ अनंत
1: मंतन जाप एक भगवंत
0: एको

0: दास प्रभु तुम्हें त्यागो
1: जन का नरसिंह लागे प्रीत
0: मदद करो प्रभु की नीति नीत
1: एको आधार
0: नानक मांगे नाम प्रभु सान
1: प्रभु की दृष्टि महा सुख होए
0: हर रस पावे बिलना कोई
1: जिन चाख्या से जन त्रिपता ने
0: पूरन पुरख नहीं डोला ने
1: सो पर परे प्रेम रस संग
0: जे चाओ साथ के संग
1: परे शरण आन सब त्याग
0: अंतिम प्रकाश अंतिम दिवलांग
1: बड़ पागी जपया प्रभु सोए
0: नानक नाम रते सुख होए
1: सेवा की मनसा पूरी पई
0: सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभु हो यो दयाल
0: सेवा की नो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकत जन पया
0: जन्म मरण दुख प्रम दया
1: इस पुण्य श्रद्धा सब पूरी
0: रब रहा सत संग हजूरी
1: जिसका साथ न लिया मिलाए
0: नानक भक्ति नाम समाये
1: तो क्यों बिसरे जे काल न पाने
0: तो क्यों बिसरे जे किया जाने
1: तो क्यों बिसरे जिन सब किच दिया
0: तो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: तो क्यों बिसरे जे अगन में राखे
0: उन पर साथ को बिना लाखे
1: तो क्यों बिसरे जे बिखते काटे
0: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े
1: गुर पूरे तति बुझाया
0: प्रभु अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो यो काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो अवर नाम जपावो
1: भगत पाए तरिये संसार
0: बिन भक्ति तन होती छान
1: सर्व कल्याण सुख निज नाम
0: उठत जात पाए विश्राम
1: सगल दुख का हो वत नास
0: नानक नाम जपो गुंतास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
0: मंतन अंतर यही सुहाओ
1: नेत्रो बेख दरस सुख होए
0: मन बिकसे सात चरण तोए
1: भगत जना के मन तन रंग
0: बिना को पावे संग
1: एक बस दी जे कर मया
0: गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए
0: नानक रहा सर्व समाए
1: प्रभ शांत दीन दयाल
0: भगत वचन सदा कृपाल
1: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
0: सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आद पुर कारण करतार
0: भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपैस होए पनीत
0: भगत पाए लावे मनहीत
1: हम निर्गुणी आर नीच अजान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए
0: एक निमख हर के गुण गाए
1: अनेक राज भोग बड़ी आई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: बोपो जन का पर संगीत
0: जपती हर हनीत
1: पली सुकरणी शोभा तनवंत
0: बसे पूरन

तब बैर विरोध की संग कमात, तब हर सो को किसे भी आपत, तब मोह कहाँ किस होवत परम, नान करने हार न दूजा, तब बंद मुक्त को किसको गनी, तब नरक सुर को कौन अवतार, तब शिव सगत कहो कित ठाए, तब कवन निडार कवन कत डरे, नानक ठाकुर अगम अपार, ते जन्म मरण कहाँ विनाशन, तब जम की त्रास कहो किस होए, तब चितर गुपत किस पूछत लेखा, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, नानक अपन रूप आप ही उपर जा, ते बिन मैल कहो क्या तोता, ते कौन कुमान कौन अभिमान, ते शाल शिदर लगत को कीस, ते किसे पूर कवन त्रिपताव है, नान करते का नहीं सुमार, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, ते बेद कतेव का को चीन, तो सगन अप सगन कहाँ बिचार है, ते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, नानक अपनी कत जान हो आप, ऊहा किसे भी आप तमाया, ते गुण का नहीं परवेश, ते कौन चिंत किस लागे चिंता, ते कौन कथे कौन सुनने हारा, नानक आपस को आपे पहुंचा, ते गुण में कीनो बेस्थार, को नर को स्वर्ग बंछावत, हमें मोह परम पै पार, अनेक प्रकार कियो बखियान, खेल संकोचे तो नानक एक, जय पसरे पसार।

0: बेता श्रेष्ठ उपाय
1: अपने पाणे लय समाये
0: सुनते पिंत नहीं किछ होए
1: आपन सु सब जगत पर होए
0: चाको प्रभु आप जाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो संतरसी तत कबेता
1: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
0: जी चंद सप्ता के हाथ
1: दीन दयाला नाथ को नाथ
0: राखे तिस को न मारे
1: सो मुँह आज सुमन हो बिसारे
0: सज अवर कहाँ को जाए
1: सब सिरे एक निरंजन राय
0: जी की जुग चाके सब हाथ
1: अंतर बाहर जान हो साथ
0: गुण निधान बेअंत अपार
1: नानक दास सदा बलिहार
0: पूरन पूर रहे दयान
1: सभी ऊपर हो बत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहे हो बे आप
0: पाले जीन वो पात
1: जो जो रचे सुत से तेहात
0: पावे तिसले मिलाए
1: भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: कर्ण हार नानक एक जान्या
0: जन्ना का हर एक नाए
1: जिसकी आस न मिर्थी जाए
0: सेवक को सेवा बन आई
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: इससे ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसिया निरंकार
0: बंधन तोर पे निर्वैर
1: अंधन पूजे गुर के पैर
0: लोक सुखिए पर लोक सुहेले
1: नानक हर प्रभु आप है मेले
0: साध संग मिल करो आनंद
1: गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तक करो विचार
1: दुर्लभ देह का करो धार
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरण का हे सुहाओ
0: आठ पहर प्रपे खोनेरा
1: मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावो
1: मन इच्छे नानक फल पावो
0: अनंत फल द्वय ले सवार
1: राम नाम अंतरि उतार
0: पूरे गुर की पूरी दिख्या
1: जिस मन बसे थे साच परीख्या
0: मंतन नाम जपो लिवलाए
1: दुख दर्द मन ते पौ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: डर गए निभे खेप तुम्हारी
0: एका टेक रखो मन माहे
1: नानक बहोर न आवे जाहे
0: इससे दूर कहाँ को जाए
1: उभरे राखन हार ते आए
0: निर्भो जपे सकल पौ मिटे
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे
0: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटे अंकार
1: जिस जन को कोए न पहुँचन हार
0: ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कारज पूरा
0: मन पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन देखत उदर

0: क्या चीज आप दिखाए
1: नानक तिसजन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कड़ कड़ ब्याप रे आ भगवंत
0: करन माही आकाश पे आन
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पान पानी पे संतर माहे
1: चार कुंट दह दिशे समाहे
0: इसे पिन नहीं कोठाओ
1: गुर प्रसा नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत में देख
1: ससियर सूर्ण कतर में एक
0: पानी प्रति सबको बोले
1: आपा डोल न कब हूँ डोले
0: सरब कला कर खेले खेल
1: मोल।

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म,
1: संत जना के हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने सब बचन,
1: सर्व व्यापी राम संग रचन,
0: किंजा तत इसकी एह रहत,
1: सत बचन साधु सब कहत,
0: जो जो होए सोई सुख माने,
1: कर्ण करावण हर प्रभ जाने,
0: अंतर बसे बाहर भी ओही,
1: नानक दर्शन देख सब मोही,
0: आप सत किया सब सत,
1: इस प्रभ ते सकली।

0: सारी सब साच
1: ओ तो पोते अपन संग राच
0: बाकी गतमित कहीं न जाए
1: दूसर होए तो सो जी पाए
0: जिसका किया सब परमान
1: गुर प्रसा नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: आप मिलाए ले प्रभु सोए
0: ओ तन मंत कुल मंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: तन तन तन जन आया
1: जिस प्रसा सब जगत तर आया
0: जन आवन का यह सुहाओ
1: जन के संग चितया।

0: पर ब्रह्म निकट कर पे
1: सास सा सिमरो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नेत त्यागो त्रंग
0: संत चना की तूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साध संग अगन सागर करो
1: हर तन के पर लियो पंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साध संग पच परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित बहु नारायण एक
0: एक रूप
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
2: पंचन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नम बारम्बार
2: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
2: लीख लाल एह रतन
1: सुनत कमावत होत उधार
2: आप तरह लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
2: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द नाहद बाजे
2: सुन सुन अनत करे प्रभ गाजे
1: उल्टे गोपाल महात के माथे
2: नानक उदरे तिनके साथ
1: कर्ण योग सुन।

0: पारा अपना जान करो प्रत पारा
1: हमरे दुष्ट सब है तुम काबो आप हाथ से मुहे बचाओ
2: सेवक सिख सबे

0: सेवक सिख्य हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये।
1: आप हाथ से मुझे अवरिये, मन का हल्का त्रास निवरिये।
0: पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझो करे और अच्छा।
1: राख लियो मुझे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।
0: दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस्तंता।
1: काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा।
0: काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।
1: जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो।
0: जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा।
1: जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो।
0: आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझेओ हमारा।
1: नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी।
0: सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह भद कियो।
1: कट कट के अंतर की जान।

0: देखी पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने।
1: जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा तर सब देह अपारा।
0: जब्बा करख करत हो कभो तुम में मिलत दे तर सब हूँ।
1: जीते पद्म श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझी उचार है।
0: तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरियालम।
1: निरंकार निर्विकार निर्लम्ब आद अनिल अनाद असंभ।
0: ताका मूढ़ उचारत वेदा चाको पेव न पावत वेदा।
1: चाको कृपान अनुमानत महामूढ़ कछ पेद न जानत।
0: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न फिर।
1: आपे अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती।
0: तुमरा लखा न जाए पसारा कै बिच सजा प्रथम संसारा।
1: एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा।
0: अंडक जेरत से तजकीनी उत्पुज खान बहु रच दीनी।
1: कहूँ फूल राजा वह बैठा कहूँ सिमट पे शंकर कैठा।
0: सगरी सृष्ट दिखाए चंबव आज जुगा स्वरूप से अंभव।
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संघरो।
0: दुश्चिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन गाता।
1: जे सुत सरणी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे।
0: पुरख जवन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे।
1: जो कल को एक बार ते आई है ताके काल निकट न है।
0: रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला।
1: कृपा दृष्टन जाए ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो।
0: सिद्ध सत कर्मो सब होई दुष्ट छाछ छ सके न कोई।
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए उभारा।
0: जिन्नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख दे रहा।
1: खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी।
0: सर्व ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।
1: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण शुभ राता।
0: किल बिक सकल देखो हरता दुष्ट दोखियन को छे करता।
1: श्रिया तुझ पे दे आला पूरण करा ग्रंथ तत्काला।
0: मन बाट पल पावे सोई दुख न तिसे पे आपत।

सचे नाम की लाग्या बहु गाय उदभोग्य खाए चलें यहां दू खाए सोग्यों बिसर मेरी माए सच्चा जाय सच्चा नाय रहा।

अरे अबे ठाकुर, अरे अबे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कटकट यंतर सर्व नरंतर जी, हरे को पुरख समाणा।

करें हर पूजा जी। ताप तापें जप है बेअंत, तिरह अनेक दिरह अनेक, पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरे अखट कर्म करंत। सह भगत बलि जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंत। तू आद पुरख अपरंपुर करता जी, तद जे उड़े अवरण कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सुहाई।

काल बाय ब्रह्मम अवतारा, काल बाय शिवजू अवतारा, काल बाय कर बसन बरगासा, सकल काल का किया तमाशा।

बुझाय आदे अंत कह अवतारा सोई गुरु समझाओ हमारा नमस्कार जसई को हमारी सकल पर जा जने आप सवारी सुगन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मम बद कियो कट कट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत सीढ़ी दुण चढ़िया धूला सब पर कृपा दृढ़ कर भूला

काट काट के पट पट की जाने, जब युद्ध कर करा कर तारा, प्रजा करत तब दे अपारा। जब यह कर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धार सब हूँ। जीते बदन दृढ़ सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही तैरत नरालम, जानत बेद भेद अरे आलम।

हर नाल रहो तू मन मेरा दुख सब में सारण अंगीकार करे तेरा कार्य सब संवारना।

तो इतनी सेवा प्रवान करनी, गुरबाणी का शब्द कीर्तन करदे आ, हुईयां भुलां दी क्षमा करनी जी। आओ साडे तो उपरंत अति सत्कारयोग ज्ञानी जी भाई कुलदीप सिंह जी, वो आप संगतां नूं गुर शब्द विचार गुर इतिहास दी दाल जोड़नगे। आओ उन्हां पासों वास्ता श्रवण करिए, गज के बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।